106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: हेलो एंड वेलकम टू द बिग बिंज, वो शो जो आपका वीकेंड सॉर्ट करता है व्हेन इट कम्स टू कंटेंट ऑन ओटीटीज। वी टोटली फोकस ऑन ओटीटीज। क्या नया रिलीज हुआ है जिसके बारे में लोग कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट, इट्स गोइंग टोटली वायरल। द कंटेंट कुड बी अ शो, इट कुड बी अ मूवी, बेसिकली यू नो व्हाट द फंडा इज, टू सेव योर टाइम ओवर द हार्ड अर्नड वीकेंड, ताकि आप स्क्रोल करने में, रिव्यूज पढ़ने में, देखने में टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए ये काम मैं कर लेता हूँ आज के लिए। एंड टुडे वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द शो दैट रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स आफ्टर सम 20 ईयर्स। सिद्धार्थ हैज डन, मैं नहीं, दूसरे वाले सिद्धार्थ रंगदे बसंती के बाद ही इज डन अ हिंदी पीस ऑफ कंटेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी टू टॉक अबाउट ऑपरेशन सफेद सागर। हियर्स व्हाट द ट्रेलर साउंड्स लाइक।
1: दोनों तरफ पहाड़ है, हल्का सा स्लिप और सीधा क्रैश।
0: I mean, if you like me, love an Air Force show, if you liked Top Gun, is this show going to match up to that level? That's what we're going to talk about. Isse dekhe, nahi dekhe, what are the good aspects, the bad aspects? And finally, the verdict, should you stream it or skip it? Netflix ka Operation Safed Sagar on the Big Binge. This is Big 106.2 and we are the beat of Bollywood.

This is The Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. And आज हम लोग बात कर रहे हैं about Operation Safed Sagar, Netflix का नया 6-episode series. And बहुत ही बड़े canvas के साथ ये आता है. In fact, that's what draws you towards the show, right? इसमें सिद्धार्थ हैं, जिम, again, please, मैं नहीं हूँ, sorry, no autographs, please. It is the other सिद्धार्थ, who's doing a Hindi piece of content after 20 long years after Rang De Basanti. Rang De Basanti वाले सिद्धार्थ इसके अंदर हैं, जिम्मी शेरगिल and अभय वर्मा. And it takes us into the world of the Air Force and during the Kargil conflict of 1999, specifically the Golden Arrows naam ka ek squadron tha. Now, here's what's catching everybody's attention, right? Even before the release, it was the scale of the show. Yaar, Netflix ne isko describe kiya hai as one of its most ambitious Indian productions. Extensive aerial sequences hain, military hardware pe focus hai, mountain locations and a production spend running into hundreds and hundreds of crores. But thankfully, शुगर बना रहे हम लोग that the show itself isn't really interested in turning every single scene into a chest thumping speech. When it comes to these kinds of shows, it's very easy to kind of fall into that trap, right? But this show doesn't fall into that trap. It is much more about pilots, pressure, internal conflict, fear, preparation and terrifying reality of flying missions at extreme altitudes. So yes, ये एक war drama है, but really, रियली देखा जाए तो इट्स मोर लाइक अ वर्क प्लेस ड्रामा, जहां पर द वर्क प्लेस हैपन्स टू बी सेवरल थाउजेंड फीट अबव द ग्राउंड. मतलब काम पे जाने में भी हम लोग रोज बॉस का और जान का जोखिम उठाते ही हैं. सो मोर कमिंग अप ऑन द शो, ऑपरेशन सफेद सागर, नेटफ्लिक्स का ये शो. व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स अबाउट द शो, कमिंग राइट अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

This is The Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, The Beat of Bollywood. And on the show today, we're talking about Netflix ka latest show. It is what everybody is talking about. It is Operation Safed Sagar. Now, show acha hai, lekin it is not flawless by any stretch of imagination. Now, my biggest problem is that once you've understood the basic rhythm of the show, ek baar aapko na show ka equation samajh mein aa gaya na, then kuch episode aise hain jo ki predictable zone mein chale jaate hain. Uska equation is briefing, mission, complication, emotional fallout, repeat. कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो यू वांट टू नो बेटर, राइट, लेकिन शो इतना फोकस्ड है ऑन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑपरेशन कि यार इनके जो पर्सनल लाइव्स हैं, समटाइम्स दे फील लाइक क्विक इमोशनल पिट स्टॉप्स रादर देन लाइक अ यू नो फुल एक्सप्लोरेशन. एक शो में यू एक्सपेक्ट द कैरेक्टर ग्राफ टू बी देयर, अगर कोई कैरेक्टर है तो उसके पीछे की बैक स्टोरी वगैरह, सो यू काइंड ऑफ दैट्स अ बिट यू फाइंड इट अ बिट वांटिंग, राइट. ओकेजनली द डायलॉग ऑल्सो बिकम्स मोर एक्सप्लेनेटरी देन इट नीड्स टू बी. कुछ होता है ना बॉलीवुड में ये आदत है कि पहले डायलॉग बोलो, उसके बाद एक पार्टी पे लिख के अपनी छाती पे चिपका भी दो इन केस ऑडियंस को समझ में नहीं आता. सो ये इंस्टेंसेस यू विल फाइंड समवन विल से समथिंग दैट क्लियरली एग्जिस्ट बिकॉज द राइटर्स वांट अस द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल सिचुएशन रादर देन, क्योंकि दो ट्रेंड पायलट्स वुड नेचुरली स्पीक दैट वे. सो आई थिंक थोड़ा रिसर्च में भी 19 बीच का, यू नो, आई फाउंड दैट अ बिट वांटिंग एज वेल. आई ऑल्सो थिंक के 6 एपिसोड्स are a bit too much. Thoda tight ho sakta tha show. And there are moments where the tension is excellent. Lekin the show pauses a little too long before climbing again. So, nahi, it's not really the edge of the seat television show that you'd expect. But when it gets airborne, literally and dramatically, it becomes much more stronger. So, it is much stronger in the air than it is on the ground. Coming up next, finally, bhai, gyan baji to bahut ho gayi, Sid, lekin is show ko dekhe ki nahi, should we stream it or skip it? Operation Safed Sagar coming up in just a while right here on The Big Binge with me, Sid.

It's time for the verdict right here on The Big Binge with me, Sid. Netflix ka Operation Safed Sagar, dekhe ki nahi dekhe? What is my verdict? And disclaimer, this is only my verdict after having seen the show. Should you stream Operation Safed Sagar? I'd say yes, stream it. But surprisingly not, because it's a war story. Aap isko isliye dekhe, because it's a very effective drama about people in a workplace doing a frighteningly difficult job. Matlab bahut hi zyada mushkil सिचुएशंस में, एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर कोई काम करता है तो कैसा होता है. सो इट्स अ वर्कप्लेस ड्रामा दैट इज सेट इन द एयरफोर्स. 6 एपिसोड्स का ये फॉर्मेट है. इट हेल्प्स कि वो 6 एपिसोड हैं, 8 नहीं, क्योंकि 8 होते तो भाई डेफिनेटली टू मच हो जाता. परफॉर्मेंसेज कंट्रोल्ड हैं, एरियल सीक्वेंसेज लुक एक्सपेंसिव विदाउट लुकिंग फेक. मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक AI मेड वीडियो देख रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द शो लार्जली ट्रस्ट करता है सिचुएशंस टू क्रिएट इमोशन इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली टेलिंग अस कि देखो, हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको ऐसा फील करना चाहिए. नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्या ये एक परफेक्ट शो है? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स कुड हैव बीन डीपर, देयर इज अ लिटिल रेपिटेशन इन द मिडल, ओकेजनली इट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स टू मच. लेकिन कंपेयर्ड टू मेनी ऑफ द अदर लार्ज स्केल इंडियन मिलिट्री ड्रामास, दिस ऑपरेशन सफेद सागर इज रिफ्रेशिंगली डिसिप्लिन. तो मेरा रेटिंग होगा 3.5 out of 5. ऑपरेशन सागर ऑन नेटफ्लिक्स, जाइए, गो वॉच इट, स्ट्रीम इट, प्रेफरेबली ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन दैट यू हैव, क्योंकि जितना बड़ा स्क्रीन हो उतना ज्यादा इस शो को देखने में मजा आएगा. सो दैट्स माई वर्डिक्ट. वॉट डू यू थिंक? यू कैन ऑलवेज लीव योर बुकेज एंड ब्रिक बैट्स ऑन आर इंस्टा. लीव मी अ मैसेज 106.2 BigFM, दैट इज आर इंस्टा हैंडल. दिस इज द बिग बिंज विद मी, सिड.

चाश्मुसज देव। वैसे कहा जा रहा है द गाना विच इज ऑन नंबर 39 ये मूवी धुरंधर 2 के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। Number 40.

0: नंबर 36 एक और रिक्रिएटेड गाना फ्रॉम पति पत्नी और वो दो ओरिजिनल गाना आमिर खान माधुरी दीक्षित पे पिक्चराइज्ड एंड पीपल आर प्रेजिंग वामिका गब्बी इन पति पत्नी और वो दो शी वाज फैंटास्टिक इन द मूवी. Coming up right here on Big 106.2, you have Big Bollywood Countdown and Mansi.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
3: दो या चार.
2: चार.
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं. चार पांच दिन में.
3: चार या
2: पांच. पांच.
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 37.

If you enjoy a thorough Bollywood masala entertainer, I am sure you've loved the movie. अगर आपने नहीं देखी है, it was so funny. Akshay Kumar, Raveena Tandon, brilliant star cast. In fact, nostalgia for us millennials, क्योंकि decades बाद इन्हें हमने screen में देखा था. With Welcome to the Jungle. इस हफ्ते नंबर 35 पर अहमद खान की मूवी, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनसेंबल कास्ट, ऑलमोस्ट 34 स्टार्स टुगेदर एंड ग्रेट रिव्यूज जो हैं इस मूवी के आए थे. फिलहाल OTT रिलीज अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट आई थिंक इट्स अ फन वॉच. आई एम एक्साइटेड फॉर हैवान नाउ, अक्षय कुमार की आने वाली मूवी. सितंबर में रिलीज होगी, प्रियदर्शन की मूवी है एंड अक्षय कुमार को हम इतने टाइम से कॉमेडी करते हुए देख रहे हैं, सो वील सी हिम इन अ नेगेटिव रोल आफ्टर एजेस. So kind of very, very thrilled for Hewan. Saif Ali Khan and Akshay Kumar reuniting after Tashan. I think 2026 is a year of nostalgia for millennials. And one such nostalgia hame is week mila with Awara Pan 2 ki release. Imran Hashmi as Shivam phir se aa chuke hain hamari zindagi mein. Great reviews coming in and I had to revise a bit before watching Awara Pan 2 kyunki main bhool gayi thi Awara Pan mein kya hua tha in the first installment, and maine first part dekha and finally maine second part dekha hai. Spoilers I won't give you, but over the weekend if you want to relive that Imran Hashmi era, go and watch Awara Pan 2.

0: On number 33 इस हफ्ते सैयद कादरी, साथ में मिथुन एंड ऑफ कोर्स विशेष फिल्म्स की विशेषता कि म्यूजिक बहुत कमाल होता है. इसी के साथ वी गॉट ऑन नंबर 22 फ्रॉम कुक स्टूडियो भारत.
1: इश्क में तेरे है फैज बने अरिज़्की.
0: Even after months, ये गाना जो है Spotify की top 50 list को top कर रहा है अनुप जैन की आवाज. Right here on Big 106.2, keeping you company. I'm Mansi. This is the Big Bollywood Countdown.
2: This is the Big Bollywood Countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 34.

number 31 from Main Wapas Aaunga. I honestly wanted to watch this movie in the theater, but mauka hi nahi mila. And maine ye movie last week OTT pe dekhi. And I cried buckets. I literally cried buckets. Yeah, big Bollywood countdown, Mansi. And what a brilliant movie. Imtiaz Ali ki movies ki khasiyat ye hoti hai ki movie finish hone ke baad bhi, when you finish the movie, you still feel all the feelings. And Naseer Sahab, he is brilliant in the movie. Like, he is a fantastic actor. I was pleasantly surprised. Vedang Rana, what a transition. He plays the younger version of Naseer Sahab, the character called Kinu, and he's done a fantastic job. Maine honestly ye movie romantic angle ke liye lagai thi, but the movie took me somewhere else. I started thinking about my grandparents. It's a beautiful, beautiful story. So please do watch. The movie is on Netflix. Filhal, moving on. Number 30 par is hafte we've got Varun Dhawan. With this title track from Hai Jawani To Ishq Hona Hai, brilliant comedy. I think agar main आज के जमाने का कोई गोविंदा सोचू कौन होगा या सलमान कौन होगा डेविड धवन की मूवीज में जो हम देखा करते थे इन अर्ली 2000s एंड 90s, आई थिंक वरुण धवन इज दैट परफेक्ट फिट. हिज टाइमिंग ऑन स्क्रीन इज माइंड ब्लोइंग. मूविंग ऑन टू नंबर 29. साकिब सलीम, हुमा कुरैशी का ही प्रोडक्शन है. दोनों भाई बहन ने ये मूवी प्रोड्यूस की है. हुमा कुरैशी प्लेज द मेन लीड फ्रॉम बेबी डू डाई डू. इस हफ्ते ऑन नंबर 29. नंबर 30.

0: number 29.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing in the top 40 biggest hits of the week. You have Big Bollywood Countdown. Keeping you company, I'm Mansi. And now moving on to Gana number 26 from Musafir Cafe, a show that's trending on socials. In fact, Netflix has officially renewed Musafir Cafe for season 2. Following a massive success of the first season, Netflix ने अनाउंस करा है कि सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है. एंड इनिशियल जो है शो रिलीज हुआ था 24th को, तो कहा जा रहा है कि वेरी वेरी सून वी विल नॉट हैव टू वेट फॉर सीजन 2. विक्रांत मासी, वेदिका पिंटो एंड महिमा मकवाना, सीजन 2 विल कंटिन्यू टू डाइव इनटू द कॉम्प्लिकेटेड रियलिस्टिक रोमांस बिटवीन चंदर, सुधा एंड प्रीति. एंड इट विल ऑल्सो एक्सप्लोर द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट सीजन फिनाले, focusing on unresolved feelings, life choices, and whether second chances can rewrite bad timing in life. Show remains an adaptation of the characters from Divya Prakash Dubey ki very very popular Hindi novel Musafir Cafe. So can't wait for season 2. Is hafte Musafir Cafe se. बहुत ही खूबसूरत गाना रेखा भरद्वाज की आवाज में. इनफैक्ट एल्बम ही बहुत खूबसूरत है. एज ब्यूटिफुल द शो वॉज एंड आई कांट वेट फॉर सीजन 2 दिस वीक. स्टैंडिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन 26. मूविंग ऑन नंबर 25 पर वी गॉट पति पत्नी और वो दो से.
2: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो ना लगे लगे.
1: Aditya Rikhari ki awaaz right here on Big 106.2, playing in the top 40 biggest hits of the week. You have Big Bollywood Countdown. Mahu Mansi.
0: Number 26.

On number 24, Dhurandhar 2 se Shashwat Sachdev. Brilliant music. I think the way he's recreated purane gaane, original songs jo banaye hain for the franchisee, it is fantastic. Playing in the top 40 biggest hits of the week, main hoon Mansi. Yeh hai Big Bollywood Countdown and talking about music. True to the legacy of the original movie, I'm talking about Awarapan. Part 2 also has a lot of brilliant soundtracks. The sequel features music which is composed by Mithun, Amal Malik and Jeet Ganguly. And of course, brings back some iconic memories from the OG Awarapan. अब मूवी जो है वो प्रोड्यूस की गई थी ऑन अ वेरी टाइट बजट अराउंड 25 टू 30 करोर्स एंड ओपनिंग डे पे ही 20 करोर इस मूवी ने कमा लिए हैं एंड फिलहाल तो वीकेंड है तो आई थिंक दिस मूवी इज ऑलरेडी अ हिट इफ यू प्लानिंग टू वॉच आवारापन 2 गो हैड वॉच इट आई एम टॉकिंग टू मिलेनियल्स यू विल लव इट इट्स प्योर नॉस्टैल्जिया फॉर

ऑन नंबर 17 फ्रॉम कॉकटेल 2 जो अब नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज गाना रिलीज करने से पहले आर्टिस्ट ने शाहिद कृति एंड रश्मिका ने खुद ही कहा कि ट्रोलर्स हम खुद को ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज वी रिक्रिएटिंग एन आइकॉनिक नंबर। I think brilliant marketing and brilliant PR. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Yeah, big Bollywood countdown. Mansi and moving on to two songs jo chipak ke reh gaye hain. I think is pure saal ye hamare countdown ka hissa honge. I'm talking about A.R. Rahman, Irshad Kamil. This one from Tere Ishq Mein. रिव्यूज आए थे इस मूवी के, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ लव स्टोरीज जहाँ पे हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती हैं, सो आई काइंड ऑफ एंजॉयड। एंड कृति सैनन, शी इज फैंटास्टिक। यू सी हर इन कॉकटेल एंड देन यू सी हर इन अ मूवी लाइक तेरे इश्क में, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। इस हफ्ते तेरे इश्क में ऑन नंबर 16। मूविंग ऑन टू नंबर 15,

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Happy weekend, playing you the top 40 biggest hits of the week. Here at Big Bollywood Countdown, keeping you company, I'm Mansi. Now, moving on to gana number 12, again, Imtiaz Ali ki Main Wapas Aunga Se. It's more than a love story. It's a story about partition, about how people lost a lot of things. I'm not talking about materialistic things. They lost on friendships. They lost on their youth. And the kind of emotions attached to a place. वो आपको दिखेगा मैं वापस आऊंगा में. पार्टिशन पे एक और मूवी है जो रिलीज हुई है, बंटवारा. एंड सनी देओल उस मूवी में है, साथ में प्रीटी जिंटा. ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. आमिर खान का प्रोडक्शन है, तो ऑफकोर्स कमाल कहानी होगी. आई हैवंट सीन द मूवी येट, बट आफ्टर वॉचिंग मैं वापस आऊंगा, आई रियली वॉन्ट टू वॉच एंड लर्न मोर अबाउट द स्टोरीज दैट हैपेंड इन 1947. फिलहाल इस हफ्ते नंबर 12 पर दिलजीत की आवाज़.

0: बात नंबर 11 पे क्या कमाल वीडियो है एंड क्या कमाल गाना है जीशान अली की आवाज में. अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिंगल. ऑफकोर्स गाना कुछ महीनों पहले रिलीज हुआ था बट स्टिल ट्रेंडिंग थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स.
1: ओ तकद

इस हफ्ते इश्का वे नंबर 11 पे. लेट्स सी नंबर 1 पे इस हफ्ते कौन सा गाना आएगा. इफ यू हैव एनी गेसेस यू कैन हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम एंड सेंड मी अ डीएम. नंबर 12.

0: प्रीतम का म्यूजिक, अरिजीत सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य एंड मधुबंती बागची दिस वीक ऑन नंबर 8
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2.

playing you the top 40 biggest hits of the week. On number 7, from Welcome to the Jungle, that was Ucha Lamba Kad. Right here, I'm Mansi, keeping you company over the weekends as well. Now, moving on to gana number 6 again from Awara Pan 2. Massive opening mili hai. जैसे मैंने आपको बताया, मूवी बहुत ही छोटे और टाइट बजट पे बनी है, 20 से 25 करोड़ की. पहले ही दिन जो है सारी वसूली हो चुकी है, थैंक्स टू इमरान हाशमी एंड थैंक्स टू द लव दैट वी हैव फॉर हिम एज मिलेनियल्स. मैंने कहा ना, व्हाट सैयारा वॉइस फॉर जेंजीज, आवारापन 2 हम मिलेनियल्स के लिए है. लॉट ऑफ पीपल आई नो पर्सनली फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए हैं. मैंने फर्स्ट डे लास्ट शो देखा है. सच नॉस्टैल्जिया, सो वर्थ इट. एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड कि इन्होंने ओरिजिनल मूवी से कई गाने को रिक्रिएट भी किया है. बट लेट मी टेल यू, व्हेन आई टॉक अबाउट द ओजी आवारापन, जब ये मूवी रिलीज हुई थी, इट वॉज अ बिग फ्लॉप. इट वॉज अ मैसिव डिसअपॉइंटमेंट व्हेन आई टॉक अबाउट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस. बट ओवर टाइम द मूवी बिकेम अ कल्ट एंड दैट इज वाई सच मैसिव फैन फॉलोइंग फॉर द कैरेक्टर शिवम एंड फॉर आवारापन

0: एंड ऑफकोर्स हमारा रिश्ता एज मिलेनियल्स बड़ा पुराना है इमरान हाशमी से. इस हफ्ते ऑन नंबर 6 इसी के साथ नंबर 5 पे थैंक्स टू सोशल मीडिया इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे.
1: मेरे प्यारे दिल च तू मेरी हसरत तू असी तेरे उत्ते मर देने सुन दे नहीं क्यों हुन तेरो.
0: सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल स्पेशली इंस्टाग्राम. मिलियंस ऑफ रील्स इस गाने पे बनी है. इट्स कॉल्ड झोल दिस वीक ऑन नंबर 5. इसी के साथ कांट वेट फॉर द सीजन 2 मुसाफिर की मैं बात कर रही हूँ मुसाफिर कैफे की. उसी से इस हफ्ते
1: पलक

0: Wow. Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स. Countdown. Here we go. सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू।
2: मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: रेसिपी फॉर अल्टीमेट आफ्टरनून, 1 कप अमृतसरी वार्म्थ, 2 स्पून्स ऑफ सिनेमैटिक ड्रामा एंड अनलिमिटेड फूड क्रेविंग्स फ्रॉम 17th ऑगस्ट। तैयार हो जाओ फॉर द आफ्टरनून शेकअप।
0: द बिग मिक्स वीकडेज 1 to 5 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: नमस्ते.
2: ओला.
1: अस्सलाम वालेकुम.
3: बोंजूर.
4: नी हाओ.
3: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big 106.2.